0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: एपिसोड 59. नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं की सवारी निकलती थी या किसी शहर में कोई बड़ा ऐलान करना होता था तो नौबत बजाई जाती थी. नौबत यानी वो बड़ा नगाड़ा जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे. उस आवाज़ का मतलब होता था सावधान, कुछ ज़रूरी बात होने वाली है. आज कबीर साहब भी एक नौबत बजा रहे हैं, लेकिन यह नौबत किसी राजा की नहीं है, वह उनके अपने जीवन की है. वे हमें याद दिला रहे हैं कि हम इस दुनिया के बाजार में बहुत कम समय के लिए आए हैं. आज का दोहा हमें अपनी अहमियत और समय की कीमत समझाएगा. आइए सुनते हैं कबीर की यह आखिरी मुनादी. कबीर नौबती आपनी दिन दस लेहु बजाए. कबीर नौबती आपनी दिन दस लेहु बजाए, ये पुर पाटन ये गली बहुरी न देखहु आए.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर नौबती आपनी दिन दिस लेहू बजाए। वे कह रहे हैं कि भाई, यह जो जीवन तुम्हें मिला है, यह तुम्हारी अपनी नौबत है। इसके पास सिर्फ 10 दिन यानी बहुत थोड़ा सा समय है, तो जितनी जोर से इसे बजा सकते हो बजा लो। इसका मतलब यह है कि जितना शुभ कर सकते हो, जितना प्रेम बांट सकते हो और जितना उस मालिक को याद कर सकते हो, इसी वक्त कर लो। क्यों? क्योंकि ये पूर्व पाटन, ये गली, यह शहर, यह ऊंची इमारतें, यह सुंदर गलियां, जहां आज तुम शान से घूम रहे हो, बहुरी न देखहू आई। यहां तुम दोबारा लौटकर नहीं आने वाले। यह मौका, यह शरीर और यह समय फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे मेले में शाम होने पर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं और मेला उजड़ जाता है, वैसे ही यह संसार एक मेला है। कबीर कह रहे हैं कि मेले के खत्म होने का इंतजार मत करो, जब तक यहाँ हो अपनी वजूद की सार्थकता सिद्ध कर दो। अक्सर हम सोचते हैं कि कल करेंगे, पर कबीर कहते हैं कि इस गली में कल कभी नहीं आता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर सोचिए, हम क्या टाल रहे हैं? हम किससे माफी मांगना टाल रहे हैं? हम कब से उस मालिक का शुक्रिया अदा करना टाल रहे हैं? हम अक्सर कल के भरोसे अपनी खुशियां छोड़ देते हैं। आज कोशिश कीजिए इस पल को पूरी तरह जीने की। यह मानकर चलिए कि यह नौबत सिर्फ आज के लिए है। किसी का दिल मत दुखाइए, कोई नेक काम करने से खुद को मत रोकिए। याद रखिए, यहाँ हम टूरिस्ट की तरह आए हैं, मालिक की तरह नहीं। गलियां वही रहेंगी, पूर्व पाटन वही रहेंगे, बस हम नहीं रहेंगे। तो आज अपनी नौबत को ऐसी सुरीले आवाज दीजिए कि आपके जाने के बाद भी उसकी गूंज हवाओं में बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ऐसी मुसीबत कैसे हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देती हूँ। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: था गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया।
1: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो?
3: मेरे पास बरसीम के बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: पीरे सरकार।
1: फैनो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: एपिसोड 59. नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं की सवारी निकलती थी या किसी शहर में कोई बड़ा ऐलान करना होता था तो नौबत बजाई जाती थी. नौबत यानी वो बड़ा नगाड़ा जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे. उस आवाज़ का मतलब होता था सावधान, कुछ ज़रूरी बात होने वाली है. आज कबीर साहब भी एक नौबत बजा रहे हैं, लेकिन यह नौबत किसी राजा की नहीं है, वह उनके अपने जीवन की है. वे हमें याद दिला रहे हैं कि हम इस दुनिया के बाजार में बहुत कम समय के लिए आए हैं. आज का दोहा हमें अपनी अहमियत और समय की कीमत समझाएगा. आइए सुनते हैं कबीर की यह आखिरी मुनादी. कबीर नौबती आपनी दिन दस लेहू बजाए. कबीर नौबती आपनी दिन दस लेहू बजाए, ये पूर्व पाटन ये गली बहुरी न देखहू आए.

0: भाई, यह जो जीवन तुम्हें मिला है यह तुम्हारी अपनी नौबत है। इसके पास सिर्फ 10 दिन यानी बहुत थोड़ा सा समय है, तो जितनी जोर से इसे बजा सकते हो बजा लो। इसका मतलब यह है कि जितना शुभ कर सकते हो, जितना प्रेम बांट सकते हो और जितना उस मालिक को याद कर सकते हो, इसी वक्त कर लो। क्यों? क्योंकि ये पूर्व पाटन, ये गली, यह शहर, यह ऊंची इमारतें, यह सुंदर गलियां जहां आज तुम शान से घूम रहे हो, बहुरी न देखहु आई। यहां तुम दोबारा लौटकर नहीं आने वाले। यह मौका, यह शरीर और यह समय फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे मेले में शाम होने पर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं और मेला उजड़ जाता है, वैसे ही यह संसार एक मेला है। कबीर कह रहे हैं कि मेले के खत्म होने का इंतजार मत करो, जब तक यहाँ हो अपनी वजूद की सार्थकता सिद्ध कर दो। अक्सर हम सोचते हैं कि कल करेंगे, पर कबीर कहते हैं कि इस गली में कल कभी नहीं आता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर सोचिए, हम क्या टाल रहे हैं? हम किससे माफी मांगना टाल रहे हैं? हम कब से उस मालिक का शुक्रिया अदा करना टाल रहे हैं? हम अक्सर कल के भरोसे अपनी खुशियां छोड़ देते हैं। आज कोशिश कीजिए इस पल को पूरी तरह जीने की। यह मानकर चलिए कि यह नौबत सिर्फ आज के लिए है। किसी का दिल मत दुखाइए, कोई नेक काम करने से खुद को मत रोकिए। याद रखिए, यहाँ हम टूरिस्ट की तरह आए हैं, मालिक की तरह नहीं। गलियां वही रहेंगी, पूर्व पाटन वही रहेंगे, बस हम नहीं रहेंगे। तो आज अपनी नौबत को ऐसी सुरीले आवाज दीजिए कि आपके जाने के बाद भी उसकी गूंज हवाओं में बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

जाएं। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर नौबती आपनी दिन दिस लेहू बजाए। वे कह रहे हैं कि

0: व्रत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: दिया गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म।
2: मेरे पास बर्फीन के दिल बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: वक्त ने किया।
1: हाय, मी आरती स्वरा। आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: पीजिए सरकार।
1: कहने का है कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: श्योर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक
2: तुम्ही ट्यून केले रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart-touching.
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

सलामी देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी। देते हैं हसीनों को सलामी, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

सताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना हो निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना।

आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सो।

मन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना।

देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना।